0: और हमारी एक पूरी टीम है वो अपना मसला बताएं और हम साथ ही उनका काम टेकअप कर सकते हैं। सर्विसेज जो है हमारी वो ये हैं कि उसमें सबसे पहले काउंसलिंग है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है, अगर उनकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उनको फौरन जो है मेडिकल लीगल एग्ज़ाम है, FIR रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट एड है, वो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो भी तशद्दुद का शिकार ख़वातीन को मदद चाहिए होती है, जैसे उसको उसके कानूनी राइट्स का बताना है, कानूनी हकूक़ का बताना है, वो हमारे लिए हमारे पास वकील मौजूद हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो उनका इनिशियल उसका सेशन करती हैं कि क्या ये बहुत डिप्रेस तो नहीं है, क्या ये अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगी, क्या ये फैसला लेने की पोजिशन में हैं। तो वो सब इनिशियल जितनी भी सर्विसेज हैं साइकोलॉजिस्ट की, लॉयर की, काउंसलर की, वो सब उसको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर उसको शेल्टर चाहिए, रहने के लिए महफूज जगह चाहिए, तो उसके लिए हम उसको शेल्टर में भी रेफर करते हैं। और हमारा एक 1737 हेल्पलाइन है।
1: अच्छा।
0: और उस पर कॉल करती हैं वो, और वो जो भी मशवरा है, काउंसलिंग है, एडवाइस है, उन्होंने अपना मसला शेयर करना है और पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट गाइडेंस उनको हम टेलीफोन कॉल पे भी दे देते हैं।
2: भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतना सारा ख्याल रखा जाता है। अब खलील साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि इसकी फीस भला कितनी होगी, इतने सारे मशवरे हैं।
1: कैसी फीस मोहतरमा भाई, वो ये तमाम खिदमात मुफ्त फराहम करते हैं, चाहे मुतासरा खातून माशी तौर पर कमजोर हो या ना हो।
2: अच्छा
3: जी, चले ये मसला तो हल हो गया, लेकिन हमारे ख्याल में एक और मसला, बल्कि मेरे ख्याल में एक और मसला मौजूद है।
2: वो क्या खदीजा?
3: जब ये मुतासरा फर्द या खातून जो भी हैं वो फोन करे, तो ये भी तो हो सकता है और मुमकिन है कि तशद्दुद करने वाला शख्स या कोई और सुन ले, इससे तो मसला पैदा हो सकता है।
1: इस हवाले से मैंने राबिया साहिबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग एक ऐप बना रहे हैं जिसके तवसुत से मुतासरा खातून अब चैट के ज़रिए भी उनसे राबता कर सकती हैं, तो ताकि कोई उनकी आवाज़ ना सुन सके और वो अपना मसला भी पहुंचा दें।
2: हाँ, ये भी अच्छा तरीका है और अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे मुझे ये बताइए कि पनागाह में उन्हें किस तरह की सहूलियात मिलती हैं? असल में मेरा ख्याल है कि जिस्मानी या जहनी तशद्दुद किसी भी इंसान को बड़ा मुतासिर करता है, और मुतासरा ख़वातीन जो हैं उनका माहरीन की ज़ेर निगरानी ख्याल रखा जाना चाहिए।
1: जी दुरुस्त कहा वसीमा साहब आपने। मैंने चीफ साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात से पूछा कि मुतासरा अफराद का ख्याल कैसे रखा जाता है और नफसियाती मदद कैसे की जाती है।
4: इसमें सबसे पहले जब जिस किसी भी तरह का जब तशद्दुद होता है तो ख़वातीन जो हैं वो एक ट्रॉमा का शिकार होती हैं। समटाइम्स वो इन द लॉन्ग रन स्लाइटली चीज़ें बढ़ती बढ़ती यहाँ तक ले आती हैं कि उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी सफ़र करना पड़ता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो परेशानी या उस ट्रॉमा में रहते हुए, उस चीज़ों को सफ़र करते हुए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाती हैं या उससे मुतासिर होती हैं, और उनको उस वक्त स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और वो वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो समटाइम्स उनको समझ भी नहीं आता कि हमने रिपोर्ट कैसे करना है और अपनी परेशानी को ज़ाहिर कैसे करना है। सो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ट्रॉमा काउंसलिंग, और उसके साथ साथ ये अगर ज़रूरत हो तो साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है ताकि उनको साथ साथ मैनेज किया जा सके।
2: अच्छा, सिन्फी तशद्दुद के मुतासरीन को माहरीन नफ्सियात के ज़रिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है।
1: जी, इनकी मदद के तरीके में सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो मुतासरा फ़र्द या ख़ातून पर मरकूज़ रखी जाती है। ताहम पाकिस्तान के शेल्टर होम में 2 साल तक बहसियत माहिर काम करने वाली उसामी साहिबा ने वहाँ एक मसले का भी मुशाहिदा किया है।
3: अच्छा, वो कौन सा मसला है?
1: मुतासरा अफराद को ख़ुद मुख्तार बनाना ज़रूरी है। उसामी साहिबा ने मुझे बताया कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन से उनका वास्ता पड़ा जो घर जाना या दोबारा शादी करना नहीं चाहती।
2: अच्छा।
1: उन्हें पता चला कि घर छोड़कर आने वाली ख़वातीन को ख़ानदान की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने एक नया निज़ाम मुतारिफ़ किया ताकि ख़वातीन के मुस्तक़बिल को वुसअत दी जा सके।
5: 結局シェルターの中にいる間っていうのはあのいろいろ精神的に落ち着かないのでなかなか先のことを考えられない。
3: シェルターホームで配置されているアフラッジャスバティトーパル、各種の難しい問題が起こっています。例えば、彼らにとって自分の将来について考えるのはとても難しいことです。ですから、パナガーから出た後、彼らにトランジェッショナルホーム、つまり、アーシー家に、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 جو رہنے کے لیے محفوظ اور مستحکم مقام ہے. وہاں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی صحت پر توجہ مرکوز کر سکیں, نئے ہنر سیکھ سکتے ہیں. وہاں وہ اپنے لیے مستقل رہائش گاہ اور روزگار کی تلاش میں مدد حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو ہے ایک ایسا نظام جو درمیانی اور طویل مدتی بحالی اور مدد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. ہم نے پنجاب حکومت کے محکمہ سماجی بہبود کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے, جس میں نہ صرف پائلٹ اضلاع میں کام کر رہے ہیں بلکہ اسے دیگر اضلاع تک وسعت دینے اور مربوط بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں.
1: یہاں جاپان میں ایسے گھروں کو سٹیپ ہاؤس کہا جاتا ہے, یعنی ایسا گھر جہاں سے بلندی اور ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے.
2: یعنی جاپان میں سٹیپ ہاؤس اور پاکستان میں ٹرانزیشنل ہوم. خلیل صاحب اسے کہتے ہیں سونے پر سہاگا, یعنی خواتین ٹرانزیشنل ہوم میں نہ صرف جسمانی اور ذہنی بحالی کے لیے وقت لے سکتی ہیں بلکہ اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے بھی تیاری کر سکتی ہیں.
3: اچھا, اسامی صاحبہ نے ٹرانزیشنل ہوم میں ہنر سکھانے کی بھی بات کی, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ خواتین کون سے ہنر سیکھ سکتی ہیں اور ان ہنروں کی افادیت کیا ہوگی؟
1: جی, رضیہ سلطانہ صاحبہ جو ہیں وہ ٹرانزیشنل ہومز کی انچارج ہیں, انہوں نے مجھے تفصیلات بتائیں, تو سنتے ہیں پھر انہی کی زبانی.
6: جب ان کو سیف شیلٹر ملتی ہے, ان کو سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے, تو ان کا کانفیڈنس لیول خود بخود بڑھ جاتا ہے, اور جیسے ہی یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, جس سے وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں, خود کمائیں, اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں.
1: اپنے پیروں پہ ان کو کھڑا کرنے کے لیے آپ ان کو کیا خدمات فراہم کرتی ہیں؟
6: اس حوالے سے ہمارے پاس پھر ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگس ہیں, جو کہ وہی بات ہے کہ سروائیور سینٹرڈ اپروچ کے تحت ہم ان کو دلواتے ہیں. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے, اس میں پروفیشنل کوکنگ بھی ہے, اس میں ٹیلرنگ, کٹنگ, اسٹچنگ والی ٹریننگ بھی ہے, اس میں میڈیٹیشن بھی ہے. تو یہ پھر, اور جو یہ تو ان خواتین کے لیے جو یہ کرنا چاہیں, اس کے علاوہ اگر پڑھی لکھی خواتین کہیں جاب کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر ہم ان کے لیے جاب کے لیے جگہ بھی دیکھتے ہیں, جیسے کسی پرائیویٹ اسکول وغیرہ میں کروا دی.
2: کسی زمانے میں پاکستانیوں کے لیے بالکل نیا کنسیپٹ اب رفتہ رفتہ قدم جماتا لگتا ہے.
1: بالکل, رضیہ سلطانہ صاحبہ کے مطابق یہاں سے ہنر سیکھ کر ایک خاتون اب شیف ہیں اور کچھ تو ٹیچر بن گئی ہیں, اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد بھی یہ ادارہ ان کی خبر گیری کرتا رہتا ہے.
3: اچھا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کامیابی کی کہانیاں بھی ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو جاپان سے شرکا جو ہیں, اسے کوئی ایسا جو ہے آئیڈیاز ان کو ملا یہاں پر جو آئے ہوئے شرکا ہیں کہ نہیں, جنہیں وہ پاکستان میں خود آزما سکیں؟
1: جی بالکل, ایسے دو آئیڈیاز کے بارے میں منیزہ صاحبہ نے مجھے بتایا.
4: بہت سارے نئے کانسیپٹس ہم نے یہاں پہ دیکھے, امپلیمنٹیشن دیکھی جو جی بی وی پریونشن اور جی بی وی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ وہاں سروسز موجود تھیں, ان لرن کا کانسیپٹ جس میں ہم نے مین انگیجمنٹ اور اس کو پرپیٹریٹرز کی ٹریننگ یا ریہیبلیٹیشن کس طریقے سے کرنی ہے, ان کو کاؤنسل کیسے کرنا ہے, اس کی انگیجمنٹ کیسے ریکوائرڈ ہے. کہیں پہ بھی جہاں پہ ایک کنٹرولنگ بیہیویئر ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم وی آر سپوز ٹو کنٹرول دی ادر پرسن اور آن دا بیسس آف دی جینڈر, تو وہاں پہ وہ چیز زیادہ پروموٹ ہوتی ہے اور زیادہ ایگریویٹ ہوتی ہے, جہاں پہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
1: آخری دن تربیتی کورس کے شرکا نے اپنا ایکشن پلان یا مستقبل کے لیے لائحہ عمل پیش کیا, اور ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے تشدد کرنے والے پر توجہ مرکوز کرنے کی بات کی, جسے وکٹمائزر اپروچ کہا جاتا ہے.
2: ویسے خلیل شاہ, یہ بڑی اطمینان بخش بات ہے, جیسے کہ رضیہ سلطانہ صاحبہ نے کہا کہ خواتین کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرنا ترجیح ہے, لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے وجوہات پر توجہ مرکوز کرنا ہی بنیادی طریقہ کار ہے.
1: جی بالکل, اسامی صاحبہ کے بھی یہی خیالات ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشدد یا استحصال کرنے والوں تک رسائی جاپان میں بھی ایک مسئلہ ہے.
2: ارے اچھا,
1: تو امید ہے کہ دونوں ممالک تشدد کرنے والوں کے لیے بھی کوئی پروگرام تیار کر پائیں گے تاکہ صنفی تشدد کی روک تھام میں مدد مل سکے.
3: بالکل, میں تو اتفاق کرتی ہوں اس بات سے. اچھا, باقی جو ہیں وہ دوسرا آئیڈیا کیا ہے جو انہیں جاپان کے دورے سے ملا؟
1: تو سنتے ہیں پھر منیزہ صاحبہ کی ہی زبانی.
4: اگین وی لرن دا رول آف بائی اسٹینڈرز, اس میں ان کو انگیج کرنا اور وہ انفارمیشن اور میسو اویئرنیس کرنی کہ ہر بندے کو پتہ ہو. اگین وی شوڈ نو دا لاز, we should be aware of these services provided in the across sorry within our vicinity. जो जो सर्विसेज जो जो मौजूद हैं, लॉ कहाँ है, क्या राइट्स हैं, एवरी वन शुड बी अवेयर ऑफ दैट. उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये कि हम कम्युनिटी में वॉलंटियर्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू यूथ इंगेजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को तैयार करें जो कि हमारे एम्बेसडर्स बने और जो साइकोलॉजिकल एटलीस्ट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें, और हम प्रिवेंशन प्लान के ऊपर काम करें, जिसमें हम पर्टिकुलरली जो हमने यहाँ पर चीज़ देखी डेटिंग वायलेंस से रिलेटेड, वो अक्रॉस द ग्लोब दैट इज़ नोन एज इंटरमेट पार्टनर वायलेंस, तो हम उसके ऊपर काम करने के लिए यूथ को प्रिपेयर करेंगे ताकि वो एक प्रिवेंटिव लेवल पे चीजें हम इम्प्रूव कर सकें.
1: इस ट्रेनिंग के शुरका ने ट्रेनिंग के दौरान एक वर्कशॉप में शिरकत की, जिसका अहतमाम तलबा रजाकारों और मुलाजमत पेशा अफराद की तंजीम ने किया था. तो वहां से उन्हें बाई स्टैंडर्ड यानी मौके पर मौजूद सुलह की कोशिश करने वाले अफराद के बारे में इल्म हुआ.
3: अच्छा, तो ये अब एक नई इस्तलाह है, यानी इसका मतलब है कि हम भी बाय स्टैंडर हो सकते हैं.
1: जी, और मुनीजा साहिबा ने इस वर्कशॉप से ये आइडिया लिया और उन्होंने महसूस किया कि नौजवान नस्ल सिन्फी तशद्दुद के खात्मे के लिए एक मुहरिक क़ुव्वत बन सकती है.
2: मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कोशिशों का अच्छा सिला मिलेगा और दुआ है कि सिन्फी तशद्दुद के खात्मे का प्रोजेक्ट ट्रांजिशनल होम और उनके नए इकदाम ना सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब से बाहर भी अपने असरात दिखाएं.
3: बस हमारी सबकी यही दुआ है कि इन सब की काविशें ज़रूर रंग लाएं और सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद की शिकार ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि माशरे के हर मुतासर फर्द को अमान मिल सके.
1: तो सामीन, दो हिस्सों पर मबनी रिपोर्ट आपने सुनी. आप इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहम है.
2: और दोस्तों, हम अपनी रिपोर्ट का इख्तिताम केंशी योनेज़ू के गाने सायोनारा माता इत्सु का यानी अलविदा फिर मिलेंगे कभी ना कभी पर करेंगे. ये गाना एनएचके के 2024 के मॉर्निंग ड्रामा तोरा नी सुबासा के लिए लिखा गया था. तोरा नी सुबासा ये एक कहावत है कि शेर जैसे मजबूत किसी किरदार को पर देकर उसकी कुव्वते परवाज को मजीद बढ़ाना.
3: मैं बताती चलूं कि सीरीज की मरकजी किरदार का निक नेम तोरा चा है, जो जापान की पहली खातून वकील से मुतासिर होकर बनाई गई. ये औरत की कहानी है जिसने शोवा के हंगामा खेज दौर में अपने साथियों के साथ मिलकर कानूनी दुनिया में एक ऐसा रास्ता बनाया जो पहले मौजूद ही नहीं था.
2: तो आज की रिपोर्ट की मुनासिबत से गीत सुनते हैं सायोनारा माता इत्सु का. आइए सब मिलकर लुत्फ उठाएं.

0: आज की रिपोर्ट के बारे में आप हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसी रिपोर्टें पेश करते रहेंगे और आपकी तरफ से आरा के मुंतजिर रहेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि हम जल्द ही जापानी बोलचाल के प्रोग्राम आइए जापानी बोलें के क्विज का ऐलान करने वाले हैं। आपने इसमें हमारी वेबसाइट के तवस्सुत से शिरकत करनी है। इसकी तफसीलात हम आइंदा प्रोग्रामों में बताते रहेंगे आपको, लेकिन आपने ईमेल्स हमें ज़रूर भेजनी है। हमारे होम पेज के तवस्सुत से इस क्विज में भी शिरकत करेंगे, जिसकी हम आपको तफसील बताएंगे आइंदा हफ्ते, और ईमेल भी आपने हमारे होम पेज के तवस्सुत से भिजवानी है।
2: homepage nhk.jp/urdu पर सबसे पहले नीचे मालूमात की सुर्खी तले एक लिंक है जिसका उन्वान है हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं। इस्तेमाल की शरात मंजूर होने की सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कर दीजिए।
1: और ये बताती चलूं फिर से कि आप हमें तहरीरी पैगाम भिजवाने के साथ साथ ऑडियो वीडियो पैगाम भी भिजवा सकते हैं, लेकिन ज़रूर भिजवाने हैं क्योंकि आपके फीडबैक के बगैर हमारा कहाँ गुजारा है। लेकिन अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आपसे इजाज़त लें, और आपको फिर बताते चलें कि हमारा होम पेज है nhk.jp/urdu। अब अपने मेज़बानों खदीजा शाह, खलील शेराजी और वसीमा आबिद को इजाज़त दीजिए।
3: अल्लाह हाफिज़।